कयोलमामते गीतायेनुनु अपि बलात्मन्यदि मराओग उडू न्यंपाओ पनासिपुलु हरि बारो।